उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो।

किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मेरे

उजाला रेडियो डे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों का नूर हो तुम। मुझे ये मालूम हो रहा है, मुझे ये मालूम हो रहा है कि जैसे मेरा ही प्यार हो तुम, के जैसे मेरा ही प्यार हो तुम, ये किस

उजाला रेडियो है ये, और इस हिस्सा का प्रोग्राम में कुछ रोमांटिक गीतों हम सेलेक्ट किए हैं आपके लिए।

कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल, फिल्म का नाम सड़क। उजाला रेडियो है ये।

दिल है कि मानता नहीं, उसी फिल्म का टाइटल सॉन्ग और उसी डुओ कुमार सानू एंड अनुराधा पौडवाल से अभी आप सुने।

फिल्म आशिकी का गीत धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना और धीरे धीरे से मेरे दिल को चुराना। उजाला रेडियो डेलक्स टॉक।

ये है ऊजा कॉफी चाय मेरा शो। वार्म वेलकम ऑल। आज है बुधवार 27 तारीख मई का प्रोग्राम कॉफी चाय मेरा शो यहीं से आरंभ होने वाला है। आज बुधवार 27 तारीख मई का प्रोग्राम। फ्राइडे के कॉफी चाय ना रहा, सोमवार के ना रहा, कन्या भी ना रहा। नया सोमवार के तो बेदाकी रहा, सब कोई की छुट्टी रहा, दस दान जो जो नहीं। फ्राइडे और दिनसा काम के वजह से और भी कुछ वजह से हमने प्रोग्राम नहीं पेश किए। हैप्पी कट प्रोग्राम नहीं थमा मार वो सैंड वी फंदा। आज हम फिर हाजिर हैं, मैं आनंद चंद्रिका सिंह जो मदेन अभी आने वाले हैं यहाँ स्टूडियो में। उमरिया कटती जाए रे या घटती जाए रे। रोहित छेदी के आवाज में हम आपको सुनाने को जा रहे हैं

ओ कैरल ओ कैरल अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनने वालों। Het is vandaag boudoir, 27 mei का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और उजाला कॉफी चाय मिदक शो में अभी आने वाला है वही आदमी या ना कम दिमाग ही बिन और हमने कौन सी पहन के आएगा मैं कन्हैया इतना गर्म वे रहा दस कन्हैया सीकर कोट ब्रुक पर है मैं आज वीरवा एकदम से फरामदर हो गए हैं योर तो का मस्टेम तू जाना तो वीरवा जो फरामदर हुआ है या ना मुझे वेल एक्स्ट्रा अलर्ट ऑफ जाए Je moet je aanpassen met het weer. Of door het weer. Want toen zocht je van, aan het garm heen gaat. Dus ja, of je denkt van, ah, het naar garm nou heen gaat. Maar ja, vergis je niet hoor. Maar aan het tot handen heb je weer. Kan je naar 30 graden, aan het 20 graden.

अंतिम संस्कार होने वाला है पूजा लड़ेड़ी पर, आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर्मार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

बेचैन होके हम तुमसे मिले। फिल्म कसूर अलका याग्निक एंड उदित नारायण, इन दोनों से आप सुने और ये उजाला रेडियो है।

और रब्बा आई ना जुदाई, फिल्म जुदाई का टाइटल सॉन्ग आप सुने। अलका अलका याग्निक, हरी हरन और जसपिंदर नीर।

ओ कैरल ओ कैरल अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनने वालों। Het is vandaag boudoir, 27 mei का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और उजाला कॉफी चाय मिदा शो में अभी आने वाला है वही आदमी। या ना कम दिमाग ही बेन और हमने कौन सी पहन के आएगा मैं कन्हिया इतना गर्म वे रहा दुस कन्हिया सीकर कोर्ट ब्रुक पर है। आज वीरवा एकदम से फरामदर हो गए हैं योर तो का मुस्तैम तू जाना तो वीरवा जी फरामदर हुआ है या दा मुझे वेल एक्स्ट्रा अलर्ट ऑफ जाए Je moet je aanpassen met het weer. Of door het weer. Want toen zocht ik je van aard garm heen ga. Dus ja, of je denkt van ah, het na garm nou heen ga. Maar ja, vergis je niet hoor. Maar aard tot handa heen je pier. Kan je naar 30 graden, aard je 20 graden.

आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं। 15 फरमाइश फॉर्मर होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

छह बजकर 8 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, ये उजाला रेडियो है और मैं हूं रतन राम दुलारे पांडे। आज बुधवार है मेरे प्यारे सुनने वालों, बुधवार है और वो भी 27 तारीख। मैं मतलब ये कि इस महीने का आखिरी बुधवार है, लास्ट वेडनेसडे। शुभ रात्रि आप सभी को हम कह रहे हैं, आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदर से। और क्योंकि बुधवार है मेरे प्यारे सुनवालों, तो आपका सेवा फिर एक बार हम करेंगे लेकर प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर। और जो आज फिर एक बार हम सजाएंगे बनाएंगे और वो भी तीसरी बार, एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद जी, इनके मूवीज से आज फिर एक बार एक प्लेलिस्ट को सजा रखा है, गाने जो इन पर पिक्चराइज किया गया है इनकी मूवीज में हम लेकर आए हैं, और उसी प्लेलिस्ट से निकालकर 9 बजे रात्रि तक गाने निकाल कर आप तक हम पेश करेंगे। तो स्वागत है, एक शुभ रात्रि आप सभी को कहते हैं। वैसे ऐसे तो नहीं लगता है कि रात्रि है, अगर आप बाहर देखोगे तो सूरज अभी तक अपना खूबसूरत गर्मी से हम सभी को बाहों में जिकेड़ लिया है, और बड़ा अच्छा मौसम चल रहा है आजकल, और काफ़ी लोग इस मौसम के साथ काफ़ी मज़ा ले रहे हैं। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भी, जो लोग को टर्न है, बाग बगीचे हैं, बालकनी है, तो वहाँ पर एंजॉय भी करते हैं। ऐसे मौसम में तो मौका मिलते हैं अपने बाग बगीचे में बैठने के, मैं तंत्रंग के वहाँ खाना, शायद कुछ बारबेक्यू हो रहे हैं इत्यादि, तो आप मजा लीजिए जिस तरह से भी आप चाहें, जिस तरह से आप चाहो। और हमारे तमाम प्रिय सुनने वालों, खास करके मुसलमान भाई बहनों को हम ईद उल अदा का मुबारकबादियाँ दे रहे हैं। ईद मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। मेरे प्यारे सुनल, हमारे ये प्रोग्राम के दौरान हमेशा की तरह आप व्हाट्सएप कर सकते हैं भी, स्टूडियो में सीधे आपका व्हाट्सएप आएंगे 020-363-0000 पर, 020-363-0000 उजाला रेडियो का स्टूडियो का व्हाट्सएप है। और रहे आपके कामों काज के लिए, आपकी फरमाइशें, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जानकारी, इंफॉर्मेशन जो आप प्राप्त करना चाहोगे, तो उजाला रेडियो को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल के जरिए या तो तार के जरिए। तार अगर आप करेंगे तो सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे, शाम में 3 बजे तक, फमानक तो तमेत सातरख इन ओखन 3 यूर तो तमेत इन मेदाख 3 यूर आप तार कर सकते हो 02-04-09-08-07 020-409-0807 नंबर फॉर ऑन्स कंट्रोल। और मेल करना चाहोगे मेरे प्यारे सुनोलो, दैट कैन नॉट्यूलक ऑलटाइट एनी मोमेंट एंड दैट कैन नार info@ujala.nl आपके हर एक कामों काज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते। सो बहुत और ज्यादा आपका वक्त ना लेते हुए हम आपको ले चलते हैं आज का पहला गीत की ओर। और पहला गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, 1982 का फिल्म स्वामी दादा से हम नगमा निकालेंगे, एक नगमा अंजान साहब जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार आरडी बर्मन, रहुल बर्मन, किशोर कुमार और कोरस, यानी कि किशोर कुमार और साथियों से आप सुनेंगे ये नगमा। हाँ जी, ये नगमा

0: प्यार दो, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे। आज का ओपनिंग सिलेक्शन मेरे प्यारे सिनोलो किशोर कुमार की आवाज और साथ दे रहे थे कोरस अनजान साहब जी का लिखा हुआ नगमा इन्होंने गाकर सुनाए हैं। आर डी बर्मन राहुल बर्मन के साज और संगीत पर 1982 का फिल्म स्वामी दादा से हमने नगमा को निकाले। और खास बात यह है मेरे प्यारे सुनने वालों की, ये फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी हैं। इनके अलावा फिल्म में भी काम किया है, जरा मैं देखूं तो मिथुन चक्रवर्ती, रति अग्निहोत्री, पद्मिनी कोल्हापुर, शक्ति कपूर, ए के हंगल, जैकी श्रॉफ, कुलभूषण खरबंडा, नाजीरुद्दीन शाह, सुधीर दलवी, भरत कपूर, सुषमा सेठ और उर्मिला भट्ट। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सिनोलो, 17 मिनट गुजर चुके हैं। और वो भी 6 बजकर मेरे प्यारे सिनोलो, हम आपको ले चलते हैं अगले गीत की ओर। और अगले गीत जो है मेरे प्यारे सुनने वालों, जॉनी मेरा नाम का एक नगमा हम आप तक पेश करने जाएंगे। जॉनी मेरा नाम देवानंद साहब जी का एक बिग ब्लॉकबस्टर मूवी है और ये फिल्म के गाने भी लाजवाब बेमिसाल है। पिछले दो प्रोग्राम में शायद मैंने आपको एक दो सुना चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इंदवर साहब जी का लिखा हुआ एक रोमांटिक लेकिन छेड़छाड़ सॉन्ग मैं पेश करने जा रहा हूँ। संगीतकार है कल्याण जी आनंद जी और जॉनी मेरा नाम फिल्म 1970 का है, नहीं 1970 का, और मोई फिल्म और एक मोई फिल्म और किशोर कुमार गाकर गीत सुनाएंगे।
1: खुला तो मैं दंग रह गया, दो हसीन आंखें मेरी तरफ देख रही थीं और दिल धड़क धड़क के कह रहा था कि जॉनी बेटे तेरी मंजिल यहीं पर है, लेकिन याद रख अगर इन्हें मालूम हो गया कि तू चोर है और चक्का है, छोटी मोटी चोरियों के इल्जाम में बार बार जेल जा चुका है, तो इन हसीन आंखों में तेरे लिए सिवाय नफरत के कुछ नहीं रहेगा।

नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दूं। खूबसूरत गीत, रोमांटिक सॉन्ग जैसे मैंने कहा, और थोड़ा सा छेड़छाड़ भी इस गीत में था ना। गीत से पहले डायलॉग भी आप सभी ने सुने हैं देवानंद साहब जी का। किशोर कुमार ने गीत को गाए हैं, इंदवर ने लिखे, संगीतकार कल्याण जी अनान जी। जॉनी मेरा नाम का ये एक नगमा है मेरे प्यारे सुनने वालों। एक फिल्म जिसका डायरेक्टर देव साहब जी के छोटे भाई विजय आनंद है, ऑफ्टर वेल मिस्टर गोली गोल्दी आनंद। हाँ जी, गोल्दी। और देवानंद ने हेमा मालिनी जी के साथ ये फिल्म में काम किया है। प्राण साहब जी भी है, प्रेमनाथ आयस जौहर जीवन पटमा खन्ना। मूवी फिल्म है। थोड़ा सा गर्मी फिर एक बार हो गया है यहाँ स्टूडियो में, तो मैं गीत आपको सुनाता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ ये ठंडा वाला जो करे वाला मशीन है ये हमने ऑन क्यों नहीं किया। मनपसंद की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनोलो। एक आप देख रहे हैं, हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में आपको बहुत शेक करता हूँ, कभी नीचे कभी ऊपर। हम चढ़ते हैं फिर उतरते हैं। अच्छे से शोर्ट फन एक्सरसाइज है, एक त्रापू नेर है, तो हम लोग चढ़ी ला उतरी ला। तो 70 से फिर हम चढ़ेंगे, जाकर पहुंचेंगे 80। नीह तीन तख्त, फिल्म का नाम मनपसंद मेरे प्यारे सुनने वालों। और मनपसंद का एक नगमा जो किशोर कुमार गाएंगे, अमित खन्ना जी ने जो लिखा और जिसका संगीतकार राजेश रोशन, डर्ट भरे गीत में गिना जाता है। मैं अकेला अपनी धुन में मैं मगन पेश करता हूँ हियर ऑन यू आर बैक टू द फ्यूचर में। प्रोग्राम एकदम लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रतनाम से बनाया जा रहा है मेरे प्यारे सिनेमा वालों।

अकेला अपनी धुन में मगन में जा रहा था। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, अमित खन्ना का लिखा हुआ गीत दड़भड़ा किशोर कुमार ने गाकर सुनाए हैं राजेश रोशन के साज और संगीत पर। 1980 का फिल्म मनपसंद से हमने ये नगमा को निकाले और ये फिल्म मेरे प्यारे सुनने वालों बासु चटर्जी का डायरेक्ट किया हुआ है। देवानंद साहब जी, टीना मुनीम, महमूद साहब, गिरीश कर्नाड, जलाल अग्गा, सिंपल कपाड़िया, बिरबल और लीला मिश्रा का एक फिल्म। आप ही का मन चाहत और फेवरेट स्टेशन। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों। अब जाकर टनी से ठंड मुझे लगी, क्या करूं, आज तो वैसे बीते हुए दिनों की तरह बहुत गर्म नहीं है लेकिन फिर भी गर्म है। एनतुल डापर तुर हियर इन स्टूडियो मागत तो एक्स्ट्रा वर्म। मेरे प्यारे सुनो, आपको हम ले चलेंगे फिर एक बार वापस 1970 के ओर। निहतिन सीवंत, फिल्म का नाम है प्रेम पुजारी और प्रेम पुजारी का एक पॉपुलर रोमांटिक सॉन्ग नीरज साहब जी का लिखा हुआ सेवा में पेश करने जा रहे हैं।

फूलों के रंग से दिल के कलम से तुझको लिखी रोज पाती। बादल बिजली चंदन पानी जैसा अपना प्यार लेना होगा हमें हर एक जन्म में, या हमें लेना पड़ेगा जन्म कई बार। हाँ, ऐसा होना चाहिए। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे से नॉलो, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, और नीरज जी का लिखा हुआ ये गीत है। संगीतकार एस दे बर्मन, सचिन देव बर्मन। प्रेम पुजारी का एक नगमा है, प्रेम पुजारी फिल्म 1970 का है, नहीं 1970। ये फिल्म भी इसका प्रोड्यूसर डायरेक्टर और एक्टर तीनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, और फिल्म में काम किया है वहीदा रहमान जी के साथ, सहिदा, सचिन पिलगांवकर, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी, शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा, नजीर हुसैन, इफ्तखार, अनुप।

धुमनंद साहब जी का प्रोग्राम हम सजा रहे हैं आज तीसरी प्रोग्राम बैक टू द फ्यूचर में हियर ऑन यू आर। मेरे प्यारे सुनने वालों, नगमाएं जो इन पर पिक्चराइज किया गया है आप तक हम पेश कर रहे हैं। और देव साहब जी तो हमारे बीच नहीं रहा, लेकिन इनकी खूबसूरत मूवीज और मूवीज में इनके खूबसूरत गाने हमेशा हमारे साथ रहेंगे उनकी यादगार बनकर। एक ऐसे ही मूवी है जो मुझे भी बहुत अच्छा लगा, फिल्म का नाम है देश परदेश। फिल्म और ये फिल्म जो है इसमें से गीत हम निकालेंगे अमित खन्ना जी का लिखा हुआ, वंस अगेन किशोर कुमार राजेश रोशन संगीतकार, देश परदेश फिल्म का नाम, और नगमा नजराना भेजा किसी ने प्यार का।

नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना। खूबसूरत गीत मेरे प्यारे सुनोलो किशोर कुमार अमित खन्ना जी का लिखा हुआ गीत है ये, राजेश रोशन संगीतकार, और फिल्म का नाम देश परदेश। मेरे प्यारे सुनने वालों, देश परदेश 1978 का फिल्म है, निहति नख्तन सीवंत। इत्तेफाक से ये भी एक मूवी है जो देवानंद ने प्रोड्यूस डायरेक्ट और एक्ट किया है। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद का मास्टर कंपोजिशन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर। और ये मूवी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टीना मुनीम जी को। और फिल्म में और कौन है, इंद्रानी मुखर्जी, अजीत साहब जी, प्राण साहब जी, अमजद खान, बिंदू टोमेल्टर, प्रेम चोपड़ा, डॉक्टर श्री राम लागू, भारत कपूर, सुचित कुमार और बहुत सारे और लोग भी हैं। महमूद साहब जी, हाँ जी, महमूद साहब जी भी फिल्म में हैं। देव साहब जी का एक और मूवी जिसमें तमाम नगमाएं लाजवाब बेमिसाल है मेरे प्यारे सुनने वालों, उसके लिए अख्तन सीवंत से हम वापस जाएंगे 1971, निहति नैनन सीवंत। फिल्म का नाम है गैम्बलर, और गैम्बलर का आज एक डट भरा गीत हम निकालेंगे और आप तक हम पेश करेंगे। ये गीत जो है नीरज साहब जी ने लिखा और सचिन देव बर्मन यानी कि एस देव बर्मन संगीतकार है। दिल आज शायर है, गम आज नगमा है, किशोर कुमार की आवाज़।

दिल आज शायर है, गम आज नगमा है। किशोर कुमार की आवाज, नीरज जी का लिखा हुआ गीत। संगीतकार एस दे बर्मन। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1971 का फिल्म गैम्बलर से हमने नगमा को निकाले। अमरजीत ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया है। देवानंद साहिरा, शटगुन शत्रुघ्न सिन्हा साहिदा, इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे 7 बजे की ओर। मेरे प्यारे सुनने वालों, कोशिश करता हूं दो नगमाएं और आप तक पेश करने का। कैक ऑफ इट गाट लुक, एक होप। पहला गीत फ्रॉम द मूवी डार्लिंग डार्लिंग। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1977 का एक नगमा, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ। राहुल बर्मन संगीतकार, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। एक मैं हूं और एक तू।

एक मैं हूँ एक तू और क्या चाहिए, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी। मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं, आर डी बर्मन राहुल बर्मन की साझा और संगीत पर। 1970 का मूवी डार्लिंग डार्लिंग से हमने नगमा को निकाले, जिसका डायरेक्टर गोगी आनंद, देवानंद सिन्हा, प्रेम चोपड़ा, महमूद जीवन का एक फिल्म। मेरे प्यारे सुनने वालों, आखिरी गीत इस घंटे का, इस गीत के बाद ब्रेक होंगे। ये गीत किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी मिलकर गाएंगे, फिल्म का नाम ये गुलिस्तां हमारा। देवानंद साहब जी का ये फिल्म 1972 का है, आनंद बख्शी जी ने लिखा, सचिन देव बर्मन संगीतकार, आत्माराम फिल्म का प्रोड्यूसर डायरेक्टर, देवानंद साहब जी, शर्मिला टैगोर, इन दोनों का एक फिल्म। पेश है नगमा गोरी ओ गोरी, मिलते हैं ब्रेक के उस पार मेरे प्यारे सुनने वालों।

बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम। हमारा नाम बनारसी बाबू, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, अनजान साहब जी का लिखा हुआ नगमा इन्होंने गाकर सुनाया है कल्याण जी अनान जी के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम भी है बनारसी बाबू, मतलब ये कि टाइटल सॉन्ग सेवा में जो हमने पेश किया है आप सभी ने भरपूर सुने और शायद भी एंजॉय की है। मेरे प्यारे सुनने वालों, 1973 का फिल्म है निहत इंद्रियन सी, शंकर मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है। एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का एक फिल्म वे जोगिता बाली, राखी गुलजार, जीवन साहब जी और मनोरमा। ये उजाला रेडियो है मेरे प्यारे सुनने वालों, 11 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 60 बजकर। लाइव यू आर के स्टूडियो रोटरडम से आप सुन रहे हैं बैक टू द फ्यूचर, और बैक टू द फ्यूचर में आज तीसरी बार हम सजा रहे हैं प्रोग्राम एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी का। बहुत सारे मूवीज इनका जो बने हैं, बहुत सारे हसीन गाने भी, लाजवाब बेमिसाल वाला इनके मूवीज में भी है। तो 3 हफ्ते से इनके खूबसूरत गाने निकाल निकाल कर प्लेलिस्ट को हम सजा रहे हैं, और बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ निकाल निकाल कर एक एक हीरा आप तक हम पेश कर रहे हैं। तो उम्मीद और आशा ये भी हम करते हैं मेरे प्यारे सुनोर कि आप भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। व्हाट्सएप आप करना चाहोगे स्टूडियो में तो ये मुमकिन है मेरे प्यारे से नौलो, सीधे स्टूडियो में आपका व्हाट्सएप आएंगे 0303639900 पर आपको ऐप करना है 0303639900। और ये कश कुछ लोगों ने उठाई है, मैं देखता हूँ आइलिन ऐठारलेम, प्रभा जी ऐतम सनाम सेंत्रम, स्वागरी सरवन नाइजी ऐत लाइडोर, मिके जी ऐत दनहाख, हेर एंद्रू और चित्रा जी ऐत मार्सब्रुक, आईफी जहांगीर ऐत आमस्टरडम, और आमस्टल फेम का सुशीला चंद्रिका सिंह जी। आप सभी को दिल की गहराइयों से डंकीवेल धन्यवाद शुक्रिया। अगले मूवी का नाम मेरे प्यारे सुनो वालों जाने मन है, जाने मन। और ये फिल्म जो है 1976 का है निहतिन सेशन सी, ये फिल्म से गीत निकालेंगे एक नगमा आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ और जिसका संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, किशोर कुमार के साथ लता जी की आवाज आप सुनेंगे। गीत जो मैंने प्लेलिस्ट पर रखा है कि की गल है कोई नहीं, कुछ इस तरह का एक नगमा किशोर कुमार और लता जी।

कीगल है कोई नहीं। किशोर कुमार और लता जी की आवाजें मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं लक्ष्मीकंद प्यारेलाल के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम जाने मन, मेरे प्यारे सुनने वालों 1976 का फिल्म है। नीहतीन सेशन सेवन, एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, इनके बड़े भाई चेतन आनंद जी ने मूवी को डायरेक्ट किया है। और देव साहब जी के अलावा हिरनी जैसे आंखें वाली हेमा मालिनी द ड्रीम गर्ल भी मूवी में काम किया है। प्रेमनाथ भी है, पैंटल, अजीत दुर्गा खोटे, जगदीश राज, इफ्तखार और बहुत सारे लोग। फिल्म जाने मन। मैं सोचता हूं मेरे प्यारे सिनेमा लोग, देव साहब जी पर कुछ फरमाइश सॉन्ग्स पिक्चराइज किया गया है, चला दूं? एक दो तीन हमारे नजर में आ रहे हैं तो मैं सोचता हूं चला डालूं, क्यों, क्या ख्याल है आपको? तो मालूम है मुझे फरमाइश गाने बहुत अच्छे लगते हैं। फरमाइश गाने, लोरी सॉन्ग, बिदाई सॉन्ग्स, जन्मदिन के गाने, तू जाने तो शादी, इन सब सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। और ये सब सारे नगमाएं जो है मेरे प्यारे से नौला, आजकल बहुत कम फरमाइश किया जाता है। मार दलिच सैन सो खवेल, आपको फरमाइश करना चाहिए। और उजाला रेडियो पर बहुत दिनों से 15 फरमाइश 100 यूरो, 100 यूरो के 15 फरमाइश, और कहा लिए रे। मैं आपको ले चलता हूं मूवी की ओर। फिल्म का नाम हरे राम हरे कृष्ण और ये फिल्म जो है 1972 का है। नीहतीन ट्वीन सीवन, एक बहन भाई राखी वाला सॉन्ग है ना, लेकिन शादी में भी ये गीत फरमाइश किया जाता है, फरियारी में भी, अगर जन्मदिन हो, सालगिरह हो, भाई बहन का प्यार। आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत, राहुल बर्मन संगीतकार, हसीनों के पुजारी किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। फूलों का, तारों का, सभी का कहना है कि 1000 में मेरी

तारों का सभी का कहना है कि एक हजारों में मेरी ये बहना है, सारी उम्र हमें तो संग रहना है। किशोर कुमार की आवाज, मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ ये गीत किशोर कुमार ने गाए हैं। आरडी बर्मन, राहुल बर्मन की साझ और संगीत पर हरे राम हरे कृष्ण फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1972 का है, 1972। और ये फिल्म भी प्रोड्यूस डायरेक्ट और इसमें एक्ट किया है एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद साहब जी, मुमताज के साथ फिल्म में काम किया है एन नटूर्लक सीनतमान, जूनियर महमूद, राजेंद्र नाथ, आंशला सखदेव, इफ्तकार और प्रेम चोपड़ा भी है, किशोर साहू, राज किशोर, इंद्रानी मुखर्जी, सुधीर। घड़ी की तरफ मैं देखूं तो मेरे प्यारे सुनवालो 3 मिनट बाकी है सरे 7 बजने में, 3 मिनट फोर क्लॉक फन हालफा मफराओ एन मनेर बिहारी जी अदबरीदा, आपके ऐप के लिए दिल से धन्यवाद। उषा जी दनाक से आपको भी धन्यवाद हम कहते हैं आपके ऐप के लिए, आप भरपूर एंजॉय करें, बस यही उम्मीद और आशा में हमेशा हम लगा रहता है। कोशिश करता हूँ अच्छे अच्छे पुराने खूबसूरत नगमाएं हर एक बुधवार ले आने का, एक कलाकार ऐसे जिसका प्रोग्राम हम बना सके, सजा सके, और इस यकीन के साथ कि आप सुनते वक्त भी मनोरंजन प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे नगमाओं के साथ। मेरे जो एक भाई है आमस्टरडम में जो रहते लेकिन इस वक्त स्पाइये में मजा ले रहे हैं, तो भैया गलत टाइम पे आपने गए स्पाइये, क्योंकि मौसम का हालात तो यहाँ बहुत खूबसूरत है, स्पाइये में शायद और भी गर्म होंगे लेकिन फिर भी इतनी दूर जाकर आपने चून किए हुए हैं। नरेश दिहाल, डंक्यू वेल, धन्यवाद आपके ऐप के लिए, और भरपूर आप एंजॉय करें, मजा लें। भैया सुनील अत अमस्टरडम, आपको भी तहे दिल से डंक्यू वेल हम कहते हैं चून करने के लिए, भैया सुनील भी हमेशा चून किए करते हैं, और जब भी आपको मौका मिलते हैं आप सपोर्ट करते हैं, आप ऐप करते हैं, डंक्यू वेल सुनील। हाँ, फरमाइश के गाने हम चला रहे थे, एक शादी वाला सॉन्ग हो जाए क्यों, क्या बात है, ठीक है, ओके रखा दून। आनंद बख्शी जी इनका लिखा हुआ एक शादी वाला सॉन्ग है, मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार जो गाएंगे, राहुल बर्मन की साज और संगीत पर, फिल्म का नाम वारंट, और वारंट जो है 1975 का फिल्म है। सुनो भाई बाराती, अरे दुल्हा दुल्हन को अकेला जरा छोड़ो। रिमेंबर दिस इज यू आर, मेरे प्यारे सुनो वालों, बैक टू द फ्यूचर हर एक बुधवार के रात्रि को 6 से 9 बजे लाइव एंड डायरेक्ट फन हाउस स्टूडियो रतनाम अप यू आर।

अरे दुल्हा दुल्हन को अकेला जरा छोड़ो, प्यार भरे बातें करे तो जीवन साथी। किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, और साथ दे रहे थे साथियों कोरस आनंद बख्शी जी, इनका लिखा हुआ गीत, ये शादी वाला गीत आनंद बख्शी जी ने लिखा, संगीतकार आर डी बर्मन, रहुड़ बर्मन पंचमदा, और फिल्म का नाम वारंट। वारंट 1975 का फिल्म है, 1975। प्रमोद चक्रवर्ती जी ने जो डायरेक्ट किया है, और देवानंद साहब जी सिनेटमान, प्राण अजीत, दारा सिंह, सतीश कौल, मदन पुरी, बीरबल, यंकी दास, सीमा कपूर, विजू खोटे, ललिता पावर, सुचित कुमार, जगदीश राज और शेट्टी का एक फिल्म। फरमाइश वाले सॉन्ग हम पेश कर रहे हैं, और मेरी नजर में एक और है, वो भी हम पेश किए जा रहे हैं। ये भी कम रोमांटिक नहीं मेरे प्यारे सुनने वालों, व्हाट अ रोमांटिक सॉन्ग, ओह माय गॉड। और ये तमाम नगमाएं आप फरमाइश कर सकते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, सेन प्रख्तक नुमर्स, ओल्ड इज गोल्ड, आपको तो मालूम है ओल्ड इज गोल्ड। और फरमाइशी उजाला रेडियो पर बहुत दिनों से, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग, एक नगमा जो सचिन देव बर्मन, एस दे बर्मन की साझ और संगीत पर मिलकर गाएंगे लता जी और किशोर कुमार। फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने, तेरे मेरे सपने 1971 का फिल्म है, 1971 और गीत के कुछ लाइनें कि जीवन की बगिया महकेगी, चहकेगी, लहकेगी, अरे भैया, हीरोन यू आर पेश करता हूँ।

जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी और खुशियों की कलियां फूलेंगी। या प्रार्थक मेरे प्यारे सुनो लो, व्हाट अ सॉन्ग। कभी कभी आप यकीन नहीं मानेंगे, हम गीत में गुम हो जाते हैं, गीत के शब्द में, इनकी अल्फाजों में सुनते सुनते हम एकदम गुम हो जाते हैं। What a beautiful song, अल्फाजे, ये शब्द जो है कितनी खूबसूरत है, उतनी ही खूबसूरत आवाजें हैं किशोर कुमार और लता जी का, और संगीतकार सचिंद्र बर्मन की म्यूजिक, और जिन्होंने लिखा उनके हाथों को तो चूमना चाहिए। What inspiration, क्या कमाल के गीत इन्होंने लिखा है नीरज साहब जी। फिल्म का नाम तेरे मेरे सपने, मेरे प्यारे से नौलो, 1971 का फिल्म है, नीहती नैनन सेवंत। एक फिल्म प्रोड्यूसर एक्टर देवानंद साहब जी, इनके छोटे भाई विजय आनंद ने फिल्म को डायरेक्ट किया है। मुमताज हेमा मालिनी डायरेक्टर, यानी कि छोटा भाई गोल्डी आनंद, यानी कि विजय आनंद ने भी मूवी में काम किया है। और इन सभी के अलावा बहुत सारे लोग, ब्यूटीफुल मूवी देखा नहीं तो जरूर देख ले लेना चाहिए, तेरे मेरे सपने। इफ ऑन डाउलर डंकी वेल फॉर ये एपियर, एंजॉय यू आर एंड हिलफुल सक्सेस मैच इन यूर वोनिंग। और डनहा शहर से भैया हैनी बदलू जी के एप भी आए हैं, बहुत बहुत डंकी वेल हैनी, या का ये नोहेल खुद हरिंदर भैया। और बेहद खुशी है हम कि आज आपने पहली बार हमारे हिस्से के प्रोग्राम में आपने ऐप किए हैं, स्टूडियो में सीधे आपके देखो ना ऐप आए हैं, और बस आप ही का साथ, आप ही का प्यार का भूखा हम हैं। उस तरफ हम आपको नहीं देख रहे हैं, एक सी ही दकनों पर एंड ऑल द कंप्यूटर्स एन आलस ड्राइट एन लोप्ड, लेकिन उस तरफ किस तरह से ये गाने, हमारी प्रेजेंटेशन किस तरह से अंदर आते हैं, किस तरह से मेरे हिस्से का उजाला आपके घरों के अंदर आ रहे हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप लोग ऐप करके ये बता रहे हैं कि आप सभी एंजॉय कर रहे हैं, तो आज तो आप सभी ने मेरा दिल खुश कर दिया। Thank you, Livell. Thank you, Livell. हम आपको ले चलते हैं अगले मूवी की ओर, मेरे प्यारे सुनने वालों। फिल्म का नाम है प्रेम शास्त्र, और प्रेम शास्त्र का एक नगमा जो आनंद बख्शी जी ने लिखा और जिसका संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है, और किशोर कुमार और नाइनटिंगेल आशा जी को आप सुनेंगे। नाम हमारा मशहूर हो गया,

0: हाँ हाँ नाम हमारा मशहूर हो गया, मान गए और पहचान गए, किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं, और वो भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की साज और संगीत पर। प्रेम शास्त्र फिल्म का नाम, और ये फिल्म 1974 का है। नीहतिन फिरन सी अमजीत ने प्रोड्यूस किया है, और बी आर इशारा डायरेक्टर। देव साहब जी का ये फिल्म सीना तमान के साथ, बिंदु, आयस जोहर, असीत सेन, अनवर हुसैन, देवत साहब जी का ये फिल्म है। रात को आप सोने जाएं, और खास करके इस तरह के गर्मी मौसम में, और या डंको मन मुख द जूजूस द खलाइड आवाजें आ रहे हैं रात के है? और खटमल भी आएंगे है ना, तो हम तो भैया डर नहीं रहते, इन सब चीजों से मैं नहीं डरता, लेकिन बहुत सारे लोग डरते हैं, इनकी नींद हराम हो जाते हैं। चिराग फेरा ऑन करके ढूंढते रहते हैं कि ये माछी कहाँ है, इन्हें पहले मैं इन्हें एलिमिनेट कर दूं, उसके बाद मैं इत्मीनान से सो सकता हूँ, मैं वो सब सारे झंझट में नहीं पड़ता। मुझे काटना है तो काटो, खून चूसना है तो चूसो, हम तो भैया इत्मीनान से सोएंगे। एक नगमा की ओर आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनो, फिल्म का नाम है छुपा रुस्तम, और ये जो फिल्म है 1973 का है। नीहतिन द्रियन सेवन नीरज का लिखा हुआ एक नगमा हम आप तक पेश करेंगे। आपको मालूम रहे, वैसे तो ये गीत रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है, यकीनन रोमांटिक सॉन्ग में गिना जाता है, दिस अथीफ तंबीच या मुसालिकत से है। इसमें एक ट्विस्ट है, सचिन देव बर्मन संगीतकार, मेरे प्यारे सुनने वालों, किशोर कुमार की आवाज में आप सुनेंगे ये नगमा कि धीरे से जाना खटमल में।
1: हे समल सुर पकड़ के धीरे से जाना खटियन में।

धीरे से जाना रे बगियन में, रे भौरा धीरे से जाना रे खटियन में। किशोर कुमार की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। नीरज का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाया एस डी बर्मन के साज और संगीत पर। छुपा रुस्तम फिल्म का नाम, छुपा रुस्तम 1973 का फिल्म है। निहत इंद्रियन से देव साहब जी ने प्रोड्यूस और एक्ट किया है। छोटे भाई विजय आनंद यानी कि गोल्डी आनंद ने डायरेक्ट किया है। हेमा मालिनी विजय आनंद ने भी मूवी में काम किया है। बिंदु के साथ अजीत भी है, प्रेम चोपड़ा और एके हंगल प्रेमनाथ। इस घंटे का आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों, उसके बाद ब्रेक होंगे वो भी 8 बजे का, और 8 बजे के बाद हम द 60s में चले जाएंगे। वहां से गाने निकाल निकाल कर आप तक पेश करेंगे। और आखिरी मूवी इस घंटे का, फिल्म का नाम है शरीफ बदमाश, और शरीफ बदमाश 1973 का फिल्म है। निखंत इंद्रियन से एक छेड़छाड़ सॉन्ग आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ पेश करने जा रहा हूँ। राहुल डबरमन की साज और संगीत पर किशोर कुमार को आप सुनेंगे। एक फिल्म जिसका प्रोड्यूसर और एक्टर वो है देवानंद साहब जी, और शरीफ बदमाश का डायरेक्टर राज खोसला, हेमा मालिनी, अजीत, जीवन, भगवान दादा ने भी ये फिल्म में काम किया है। मेरे प्यारे सुनोल, आप एंजॉय करें इस गीत के साथ, और मिलते हैं ब्रेक के उस पार विद देवानंद। टीजर हिस्सा बैक टू द फ्यूचर ऑन यू आर, बैक टू द फ्यूचर में वो भी लाइव एंड डायरेक्ट यू आर के स्टूडियो रोहतक नाम से।

जवान तुम हो और जवान हम हैं और ये प्यार जो है तुमसे हो गया है। या सुनो का बादशाह दलेजन पत्मा श्री मोहम्मद रफी साहब जी की आवाज, और वो भी हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ ये रोमांटिक सॉन्ग इन्होंने गाकर सुनाए शंकर जयकिशन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम दुनिया मेरे प्यारे सुनने वालों, दुनिया 1969 का फिल्म है। नीहति नेहनन सेसख एक फिल्म जिसका डायरेक्टर प्रकाश टी राव है और देवानंद साहब जी, विजयंतीमाला, प्रेम चोपड़ा, द ग्रेट बलराज सानी, जॉनी वॉकर, मदन पुरी, ललिता पावर, इन सभी का एक फिल्म है। उजाला रेडियो है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और घड़ी की तरफ मैं देखूं तो धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 11 मिनट ओवर आख की ओर। अभी होंगे मेरे प्यारे सुनने वालों 8:11 और हम द 60s में आन पड़े हैं और धीरे धीरे धीरे हम नीचे जाएंगे द 50s की ओर, लेकिन हम 50s में आ पाएंगे या नहीं ये वक्त बताएंगे। बैक टू द फ्यूचर है ये मेरे प्यारे सुनने वालों, और स्टेशन का नाम उजाला रेडियो, लाइव एंड डायरेक्ट यूआर के स्टूडियो रतनाम से। आज तीसरा हिस्सा हम पेश कर रहे हैं द एवरग्रीन सुपरस्टार देवानंद जी, इनके मूवी से निकाल कर इन पर पिक्चराइज किया गया खूबसूरत नगमाएं आज के प्लेलिस्ट पर या प्लेलिस्ट में सजा रखे हैं, और उसी प्लेलिस्ट से निकाल निकाल कर एक एक हीरे आप तक हम पेश कर रहे हैं। इस गीत के बाद मेरे प्यारे से नोलो दुनिया फिल्म के बाद हम वहान वेल नार 50 1955 मेरे प्यारे से एक वास नहीं खबर भैया 1955। वेल हमारे प्रिय जो है सहील लुधियानवी जी, इनका लिखा हुआ गीत, एक दर्द भरा गीत मैं पेश करने जा रहा हूं, और गीत दादा हेमंत कुमार जी गाएंगे एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर। फिल्म का नाम हाउस नंबर 44 या 44। हेमंत कुमार जी को हम पेश करते हैं।

तेरी दुनिया से या तेरी दुनिया में जीने से तो बेहतर है कि हम मर जाएं। दादा हेमंत कुमार जी की आवाज में गीत आप सभी ने सुना है, डर भरे हमारे प्रिय सहेल लुधियानवी जी इनके लिखे हुए नगमा दादा हेमंत कुमार जी ने गाकर सुनाए। सचिन देवबर्मन की साझा और संगीत पर हाउस नंबर 44 से गीत हमने निकाले हैं और ये फिल्म 1955 का है। मेरे प्यारे सुनने वालों, फिल्म का प्रोड्यूसर और एक्टर देव साहब जी और डायरेक्टर है एम के बर्मन और मैं देखता हूँ कल्पना कार्तिक भी फिल्म में काम किया है जो देव साहब जी की स्पाउस है। इनकी वाइफ है और या था वन देव साहब तो अब जी नहीं रहा। केन सिंह भगवान दादा कुमकुम इन सभी ने ये फिल्म में काम किया है। टूनी इसरी अर्थ लेलिस्ता दंकीवाल आपके ऐप के लिए और माइस दनाह का सॉरी आमस्टरडम डंक दंकीवाल और बेहद खुशी है हम कि आप दोनों भी एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय क्योंकि और भी खूबसूरत गाने आने वाले हैं। वैसे तो हम आन परे हैं द 60s और द 50s में आपको झुला रहे हैं। अब देखो ना 55 से हम आपको ले चलेंगे 10 साल ऊपर। नौ सरस तैरती यार बोफ ननी हती नाखतन से या वेल 1968 फिल्म का नाम है महल और महल का एक खूबसूरत गीत आप तक पेश करेंगे। ये फिल्म जो है इसमें बहुत सारे हसीन गाने हैं महल और एक आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ रोमांटिक सॉन्ग मिलकर गाएंगे किशोर कुमार और आशा जी नगमा को और वो भी कल्याण जी आनंद जी के साझ और संगीत पर कि ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई और ये बात किसी से ना कहना।

ये दुनिया वाले पूछेंगे मुलाकात हुई क्या बात हुई और ये बात किसी से ना कहना। किशोर कुमार और नाइटिंगेला आशा जी की आवाजें मेरे प्यारे सुनने वालों, आनंद बख्शी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए हैं और वो भी कल्याण जी हनान जी के साथ, और संगीत पर फिल्म का नाम महल मेरे प्यारे सुनने वालों, महल फिल्म 1969 का नीहति नीहनन से शंकर मुखर्जी का डायरेक्ट किया हुआ, देव साहब जी और आशा परेख का एक फिल्म। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, यावखान फान नीहति नीहनन से हम आपको वापस ले चलेंगे 1956 की ओर। नीहति सेसन फाइव तक फिल्म का नाम है सीआईडी और सीआईडी का एक रोमांटिक लेकिन मस्ती भरी गीत मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ सेवा में पेश करने जा रहा हूँ। गीत मिलकर गाएंगे शमशाद बेगम जी और द लेजेंड रफी साहब जी, और वो भी ओपन नैयर के साज और संगीत पर किले के पहला पहला प्यार।

लेके पहला पहला प्यार करके आंखों में घुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। शमशाद बेगम और रफी साहब जी की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ ये प्यार भरा मस्ती भरी गीत, और संगीतकार थे उपेन नैयर। 1956 का फिल्म सीआईडी से हमने खूबसूरत गीत को निकाल कर आप तक पेश किया है, और ये फिल्म का डायरेक्टर राज खोसला देव साहब जी और वहीदा रहमान का एक फिल्म है मेरे प्यारे सुनने वालों, जिसमें शकीला भी है, कुमकुम, केएन सिंह और शीला फास। भैया राजेश सिंह रोहतनाम शहर में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, तो डंकीवेल जुड़ने के लिए उम्मीद और आशा करते हैं कि आप भी भरपूर एंजॉय कर रहे होंगे। आपको ले चलते हैं 1968 की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। नीखती नाख्तन सिस्तख, एक गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, रफी साहब जी की आवाज में आप सुनेंगे, शंकर जय किशन की साज और संगीत पर। फिल्म का नाम कहीं और चल, और गीत का बोल है डूबते हुए दिल को तिनकने का सहारा भी नहीं। मालूम पड़ता है दर्द भरे गीत है, पेश करता हूं सेवा में, हियर ऑन यू आर, बैक टू द फ्यूचर में।

डूबते हुए दिल को तिनके का सहारा कोई नहीं। रफी साहब जी की आवाज, मेरे प्यारे से नॉर्मल डर भरे गीत हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ इन्होंने गाकर सुनाए हैं, और वो भी शंकर जयकिशन की साज और संगीत पर। कहीं और चल फिल्म का नाम, कहीं और चल 1968 का मूवी है, निहति नाख्तन सिस्तख, एक फिल्म जिसका डायरेक्टर विजय आनंद और देवानंद आशा परेख का एक फिल्म है। 6 मिनट गुजर चुके हैं सरे 8 बजकर, मेरे प्यारे सुनने वालों 6 मिनट ओवर द क्लॉक फन हाल्फ नीग, और 9 बजे तक आपका साथ हम लेंगे। मेरे प्यारे सुनने वालों, आपको भी ये मालूम रहे कि कल जो इस महीने का आखिरी दोनडा है, बृहस्पतिवार है, हम आपकी सेवा करने चले आएंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज। मेरे प्यारे सुनने वालों, दिल की आवाज कल रात्रि को 8 बजे रात्रि से मोरखनाफन फनफ अख्तूर तुत एलव्यूर सेवा में हम पेश करेंगे विद रोमांटिक सॉन्ग्स और ब्रोकन हार्ट सॉन्ग्स। तो उम्मीद तरह आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर मेरा साथ देंगे। मोरखनाफन डोंडडाख हियर ऑफ यू आर लाइव फनाइट स्टूडियो रोटरडम प्रोग्राम दिल की आवाज फनफ 8 uur इन द आवन तुत एलव्यूर इन द आवन। देखो देखो मैडम सुनो जो कह चले हम, है चीज सबसे बढ़िया और नाम जिसका लॉलीपॉप। शैलेंद्र जी का लिखा हुआ एक छेड़छाड़ सॉन्ग पेश करने जा रहा हूँ। फिल्म का नाम प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत 1966 का फिल्म है, निहतिन सेशन सिस्टर, शंकर जयकिशन संगीतकार और गाने वाले हैं दादा मन्ना डे और रफी साहब जी। पेश करता हूँ सेवा में

देखो देखो मैडम सुनो जो कह चले हम, है चीज सबसे बढ़िया है नाम जिसका लॉलीपॉप। रफी साहब जी और दादा मन्ना डे की आवाजें, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ ये छेड़छाड़ सॉन्ग दोनों ने मिलकर गाए हैं और वो भी शंकर जयकिशन की साज और संगीत पर। प्यार मोहब्बत फिल्म का नाम। मेरे प्यारे सुनने वालों, प्यार मोहब्बत 1966 का फिल्म है, निगेटिव सेशन सेशन, शंकर मुखर्जी इनका डायरेक्ट किया हुआ एक फिल्म जिसमें देव साहब जी ने काम किया है सायरा बानो जी के साथ, प्रेमनाथ, शशिकला और कौन है, देवत साहब जी, यंकी दास, दुर्गा खोते, मुराद साहब जी, असित सेन और सुरक्षा।

छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। अगले गीत का बोल है रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग मेरे प्यारे सुनने वालों, और ये गीत जो है मजरू सुल्तानपुरी जी ने लिखा, संगीतकार एस देव बर्मन, सचिन देव बर्मन, नाइनटी इलाशा जी और किशोर कुमार मिलकर गीत गाएंगे फ्रॉम द मूवी पेइंग गेस्ट। और पेइंग गेस्ट जो है 1957 का फिल्म है। नी हतीन 57 पेश करता हूँ सेवा में।

0: का
1: छोड़ दो आंचल जमाना क्या कहेगा। किशोर कुमार और नाइटिंगेल आशा जी ने गीत मिलकर गाए हैं रोमांटिक छेड़छाड़ सॉन्ग, वो भी मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ। संगीतकार थे एस देव बर्मन, मेरे प्यारे सुनने वालों सचिन देव बर्मन। पिंगेस फिल्म का नाम, पिंगेस 1957 का फिल्म है, 1957। और सुबोध मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है देवानंद नूटन का एक फिल्म, मूवी फिल्म हो मेरे प्यारे सुनने वालों। पिंगेस बहुत खूबसूरत मूवी है और गाने लाजवाब बेमिसाल। ले चलता हूं आपको अगले गीत की ओर। क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, गीत का बोल है और शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत है, रफी साहब जी की आवाज, एस डी बर्मन संगीतकार। फिल्म का नाम गाइड और ये फिल्म 1965 का है, 1965। रफी साहब जी

0: प्यार में
1: क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में। रवि साहब जी की आवाज, शैलेंद्र जी का लिखा हुआ गीत इन्होंने गाकर सुनाए हैं। सचिन देव बर्मन के साज और संगीत पर फिल्म का नाम गाइड मेरे प्यारे सुनने वालों 1965 का फिल्म है, निकटीन फेवन सिस्टर। और ये फिल्म आपको मालूम रहे, फिल्म का जो प्रोड्यूसर और एक्टर दोनों ही देव साहब जी, देवानंद जी, और इनके छोटे भाई विजय आनंद ने डायरेक्ट किया है। देवानंद साहब जी ने मूवी में काम किया है वहीदा रहमान के साथ, किशोर साहू, अनवर हुसैन। इस गीत के बाद मेरे प्यारे सुनने वालों, तो 65 के बाद हम आपको 2 साल वापस ले चलेंगे 1963 की ओर, निकटीन द्रियन सेसख। और एक गीत जो है रोमांटिक रूठना मनाना सॉन्ग, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ, जिसका संगीतकार है एस डी बर्मन, सचिन देव बर्मन मिलकर गीत गाएंगे, रवि साहब जी और लता जी। तेरे घर के सामने फिल्म का नाम, तेरे घर के सामने, इतनी हतिंद्रियन से सख देखो रू थाना करो।

ठीक हूँ, रूठा ना करो, तुम सताया ना करो। या दत्वस नतुलक लता जी और मोहम्मद रफी साहब जी, हसरत जयपुरी जी का लिखा हुआ गीत दोनों ने मिलकर गाए, सचिन देव बर्मन की सांझ और संगीत पर। फिल्म का नाम तेरे घर के सामने और ये फिल्म 1963 का है। निखिलेंद्रियन से देव साहब जी का प्रोड्यूस और एक्ट किया हुआ मूवी, छोटे भाई विजयानंद ने डायरेक्ट किया है, नूटन ने साथ दी है मूवी में, ओम प्रकाश राजेंद्र नाथ। मेरे प्यारे सुनो, आखिरी गीत हम पेश करने जाएंगे, इस आखिरी गीत के बाद हम यहाँ से रुखसत होंगे। आज साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी से फिर कल मिलेंगे लेकर प्रोग्राम दिल की आवाज रात्रि में 8 बजे से 11 बजे। शारदा जी एट लिस, पूनम जी एट सेंट मार्थ और अनिता जी एट सुरिनाम, थैंक यू लिवेल आप के ऐप के लिए। मेरे प्यारे सुनो, ये आखिरी गीत फ्रॉम द फिफ्थ मूवी माया पेश करने जा रहा हूँ। 1961 का फिल्म है, निखिलेंद्रियन से सलील चौधरी जी के साज और संगीत पर, मजरू सुल्तानपुरी जी का लिखा हुआ गीत, रफी साहब जी गाकर सुनाएंगे रोमांटिक सॉन्ग की कोई सोने की दिल वाला। डायरेक्टर केशव साहब जी, देवानंद और माला सिन्हा का एक फिल्म। मिलते हैं कल मेरे प्यारे सुनो लेकर प्रोग्राम, जब हम हाजिर रहेंगे दिल की आवाज और वो भी रात्रि में 8 से 11 बजे लाइव हियर ऑन यू आर। रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय, लव यू ऑल।

बीन कोटरावर तोर विवाह होने वाले हैं, तोर शादी होने वाले हैं, सुन वालों तो डीजे आर फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 फ्रागे फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस ga jij binnenkort trouwen? Door wie baan honen wel het, door shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

उजाला के ऑल टाइम फेवरेट्स जो हर दिल को खुश कर देते हैं, सुनिए और गुनगुनाइए।

0: है उजालास कॉफी चाय मिडल शो। वार्म वेलकम ऑल। आज है बुधवार, बुधवार 27 तारीख मई का प्रोग्राम कॉफी चाय मिडल शो यहीं से आरंभ होने वाला है। आज बुधवार 27 तारीख मई का प्रोग्राम। फ्राइडे के कॉफी चाय ना रहा, सोमवार के ना रहा, कन्या भी ना रहा।
1: चुंदरिया
0: सोमवार की तो विदा की रहा, सब कोई की छुट्टी रहा, दस दान जो जो नहीं। फ्राइडे और दिन सा काम के वजह से और भी कुछ वजह से हमने प्रोग्राम नहीं पेश किए। हैप्पी कथ प्रोग्रामा नहीं थमाक मार वसैन वी फंदा। आज हम फिर हाजिर हैं। मैं आनंद चंद्रिका सिंह जोमदेन अभी आने वाले हैं यहाँ स्टूडियो में।

ओ कैरोल ओ कैरोल अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए पेश किया गया है सुनने वालों। Het is vandaag boudoir, 27 mei का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और उजाला कॉफी चाय मिदक शो में अभी आने वाला है वही आदमी। या ना कम दिमाग ही बेन और हमने कौन सी पहन के आएगा मैम कन्हिया इतना गर्म वे रहा दस कन्हिया सीकर कोर्ट ब्रुक पर है। आज वीरवा एकदम से फरामदर हो गए हैं योर तो का मस्टैम तू जाना तो वीरवा जैसे फरामदर हुआ है या दा मुझे वेल एक्स्ट्रा अलर्ट ऑफ जाए Je moet je aanpassen met het weer. Of door het weer. Want toen zocht ik je van, aardig garm heen ga. Dus ja, of je denkt van, ah, het is garm nou heen ga. Maar ja, vergis je niet hoor. Maar aardig tot handen heb je weer. Kan je 30 graden, aardig 20 graden.

0: ही गनो के ना मुइले है कि इतना ना मुझसे तू प्यार भरा अभी आपने सुने हैं उजाला रेडियो के जरिए एंडी मानी साहब मिनोर अलीनो के तनी थोड़ा से वक्त लगे है सेती उती करके
1: आई गले
0: कोर्टो ब्रुक बैंक तो कोर्टो ब्रुक का कहां कर ले
1: या तो नहीं कई खेर दान
0: Oh, ai, werkelijk, nee, werkelijk.
1: Dat gaat voorlopig niet in de kast, hè? voorlopig hoe kan maar gewoon roach.
0: Sub korte broek liker gega, klerenkast moet zijn.
1: Nou, bara lekker liggen, Chaloit.
0: Heerlijk, toch?
1: Het is zo lekker, hè, om luchtig rond te lopen.
0: Lekker t-shirt en een korte broek, of slipper pijnke. Heerlijk.
1: Het is mooi liggen, maar garam wat zo'n heiga. Kabi maar de weet, hè? Vind je niet? Amai naki, amai trouwigwe. Goedemiddag trouwens.
0: Goedemiddag Haaland, goedemiddag. Ja, kan ja, behoed garam raken. Afgelopen dagen was het warm. Maar wel lekker toch? Lekker heerlijk. Maar het is wel extreem hoor. Van koud naar warm en weer koud.
1: Maar dit gelijk insaan kan je zeggen. Ja. Het is echt nooit goed hè.
0: Ariaartje.
1: Maar zo is de mens. Zo is de mens. Ja. Koets naar koetje higa.
0: Ja.
1: Klaagkeren.
0: Maar gaan we ook aanpassen kan Lela toch?
1: हाँ मैं जाने एकदम कड़ा जग हम रहेगा अखड़े ही अच्छा अद्भुत वाला भाई जो पैन हो
0: मैं तू क्या करेगा जोर से घमुआ तेज से रहे घमुआ तक तू क्या करेगा
1: दबलाइफ लीफर इन द एयर को
0: या
1: घमुआ थोड़ा से जैसा साका हो जाएगा ऑफ शादी हो जाएगा दन फिर तक बाई तो वेल वेल लेकर इन दी फेल सोन रोंट लोपर लीफर ना
0: हफ्ता भर हम तो किना दिखली ना सुन ली
1: कहाँ रही ले?
0: अरे हम भी तो नहीं घूम थी इधर उधर घूमती थी काम भी रहा और बेदाकी रहा कन्या को निकोग

0: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?
1: Ye kya?
2: Tofa.
1: Tofa? Tofa to mujhe dena chahiye tha.
2: Tumse tofa maine le liya hai.
1: Ji, mujhse?
2: तुमसे तुम्हारी टीचर
1: जोकर इसका क्या करूं
2: इसे अपने पास रखो मैं तुम्हें तुम्हारे लिए तुम्ही को लौटा रहा हूं
1: जी मेरे लिए
2: देखो एक दिन राजू बड़ा होगा लेकिन जोकर राजू ऐसा ही रहेगा भोला मासूम इसे जिसके हवाले करना सोच समझ कर करना दुनिया में जोकर के साथ जो करता है मजाक करता है गुड बाय

नाना नानी दादा दादी काका काकी मामा मामी फुआ फुफा बहन और ए भाई तो भी सुने है तो उजाला रेडियो।

0: उजाला रेडियो दे अवे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है। तू बता दे सबको इसे बताते हैं। ऑटो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहाँ पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।
1: रंग महल पे